के छाती न लाया, पता नहीं बाबे बुढ़े दे अंदर की कृपा वरती। 1518 तो लैके 1631 तक बाबा बुढ़ा गुरु नानक दे गीत ही गाउंदा रहा। 113 साल एक गलवकड़ी ने इनी कृपा कर दिती। मैं अगे तुरा, मेरे गुरु नानक साहब ने करतारपुर बनिया रावी दे किनारे दोधे जिमीदार दी जमीन दे अंदर पिंड बनिया। इथे दोधे ने कहा सी, मैं संखेप विच अर्ज कर दिया, जदों कृपा की गुरु नानक ने कहा सी दातिया मैं पिंड वसावांगा। पुछया केड़े नां ते, कहन लगा साइया नानकपुरे दे नां ते। ते मेरे साहब ने कहा सी दोधिया जमीन कि दीए, कहन लगा करतार दी। पुछया नानक किदा, कहन लगे करतार दा। फिर कहन लगे जे जमीन ते नानक करतार दा है, फिर नानकपुरा नहीं पिंड वसेगा उस नां ते जिदी दात में लईए पिंड वसा तू करतारपुरा। इथे करतारपुर वसाया। सतगुरु ने अपने जीवन दे 18 साल करतारपुर वाही कीती है। खद्दर दा परना मोढ़े ते होना, खद्दर दी चादर मोढ़े ते, सिर ते मोटा खद्दर दा परना। कदी देखो उन्हां दिनां नूं, सिखां ने खेतां विच कम करना ते मेरे गुरु नानक बाबा जी आप विच शामिल होना। ते जदों घर आउणा मंजी अलाणी ते बहना ते सिंघां ने कोल बह के निरंकार रूप गुरु नानक तो बचन सुनने। सतगुरु ने 18 साल इत्थे हल वाया ते भाई गुरदास ने इसे गल नूं कहा। फिर बाबा आया करतारपुर, भेख उदासी सकल उतारा, पैर संसारी कपड़े, मंजी बैठ किया अवतारा, सोदर आरती गाविया अमृत वेले जा पुचारा। धर्मशाला कैम हो गई। बाबा बुढ़ा भी पिंड रमदास तो अपने माता पिता न रमदास चले गए, उथों करतारपुर पहुंच गए। गुरु नानक साहब की कृपा अथाह वर्षी। संखेप अर्ज करा, जितन अंतले दिन गुरगद्दी भाई लैणे नूं मिलनी है ते जन्म साखी वाले ने कुछ बचन बड़े प्यारे सांभे ने। ओ कहिंदा गुरु नानक साहब ने धानकां वाला रूप बनाया, हाथ विच सोटा पकड़िया, लम्मा चोगा पा के शिकारी कुत्ते लै के जंगल नूं तुर पै, पिछे संगतां तुरियां। ओ कहिंदा लिखदा जन्म साखी वाला, पहला हजूर ने खीरियां दी बरखा कीती, सोने चांदी दी बरखा होई, रुपईयां दी बरखा होई, लोग पैसे लैके पिछा मुड़दे रहे, इस साखी विच भी रमजे। आखीर ते मुकदी गल की, एक भाई बुढ़ा ते दूसरा भाई लैणा, इन्हां ने ना हीरे देखे ना मोती तके, बस नीवी पा के गुरु नानक जी दे पिछे पिछे तुरे गए। सतगुरु रुक गए ते बाबे बुढ़े वल इन्हां ने सोटा उघारिया ते ओ तां इथों तक लिखदे ने, बाबा बुढ़े जी दे मोढ़े दे उत्ते सतगुरु ने डांग भी मारी ते कहन लगे बुढ़िया मैं तैनू कहना अपने घर नू चला जा, कि तू अपने घर जाएगा नहीं, लोग दौलत लैके मुड़ गए, तू अजे भी पिछे तुरिया उन्ने। ते भाई बुढ़े दा अगो उत्तर सी दातिया, जिन्ना लोकां दे घर ने घरां वाले तां अपने घरां नू चले गए, मेरा घर तां उदण दे मुक गया सी जिदन दा तू गुलवकड़ी विच लै के प्यार दिता है, घरां वाले घरां नू चले गए, बुढ़े दा ते घर ही गुरु नानक है, दस तेनू छड के केड़े पासे जाऊं। जदों इन्ने शब्द कहे ना, सतगुरु ने बुढ़े नू फिर छाती न लाया, कहन लगा दातिया तेरे तो विछड़ के नहीं मैं रह सकदा। उथे जड़ी पंक्ति मेरे बाप

ओहम पातिक बिना सह गुर अमरदास परसी है सिद्ध साधक आशा सह गुर अमरदास परसी है ध्यान लइए पौ मुकह गुर अमरदास परसी है अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जो तो रहै जा सुमंत्र मानवैल है जाल पाप दार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठ मिले कन हर बूंद बसोरू मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन पल उन्हें सो गावै

परम सम्मान योग युग युग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाही मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों हजूर दी पावन पवित्र इलाही बाणी दा कीर्तन और गुरमत विचारा आप जिया ने सत्कार योग भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी खुरां पासों सरवण कीतिया ने कल दा दिन जो बतीत होया है कल दे दिहाड़े धन गुरु अमरदास महाराज तीसरे गुरदेव दा गुरगद्दी नशीनी पुरब सी ते गुरु अमरदास महाराज जी दे इस पुरब नू आपां अज मना रहे हां। गुरु नानक साहब जी दे इस घर दे अंदर जदो आपां इतिहास नू गुरमत नू पढ़ने हां ते एक चीज बड़ी विलखण सानू जिहड़ी नजर आउंदी है इत्थे गुरु दी कृपा ते निर्भर करदा है। 60 साल दा बजुर्ग बाबा भी जे किते गुरु के चरणा भी जुड़ के सेवा करे ते जिस समय लोग कहिंदे ने 70-72 साल दी उम्र विच बंदे नूं सूझ कोई नहीं शब्द वरतदे ने इह 70-72 गया है। 12 साल गागर ढो के 72 साल दा बजुर्ग भी सिख तो गुरु

इने सच दे पुजारी नू पहाड़ तो सत्या ते पहाड़ दी थले वाली खाई ने इस तरह प्रहलाद नू लपेट लिया जिवें मानो किते मां दी गोद विच ओनू लोहड़ियां देंदी होवे। पहाड़ तो सत्या ओ मरिया नहीं। मैं केवल गाथा नहीं सुना रहा, मैं बाणी दे शब्द दे आधार ते अर्ज कर रहा कहानी नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने परत के जदों पहाड़ तो सत्या भी मौत ना हुई ते इनू रुख दे उपर चढ़ के थले सटिया ते रुख ने अपनी जिरां दिखाई उन्हने भी प्रहलाद नू चोट न आउण दित्ती। परत के इन्हां कहा प्रहलाद नू पानी दे दरिया भी सटो ते पानी ने भी अपना फर्ज अदा करा कर दिता, क्योंकि प्रहलाद तां उन्हू जपदा पिया जिदे भय दे अंदर साहिब कहिंदे ने भय विच चले लख दरियाओ ते पानी दे दरिया ने भी प्रहलाद नू कुछ ना कहा। हुण जिथों होली आरंभ होनी है कहिंदे ने इस हरनाक्ष दी भैण जिदा नाम सी होलिका, भाई कान सिंह होरां दे मुताबिक इस दा नाम सी टूंडा, इन्हें आराधना कीती शिवजी दी, देवते दी आराधना करके इन्ना कु भर लिया सी कि इनू कदी अग साड़ेगी नहीं। ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने हरनाक्ष ने अपनी भैण दी गोदी विच अपना पुत्र बिठा दिता, बलदी हुई चिखा विच होलका बैठ गई, प्रहलाद नू गोद विच बिठाया, क्योंकि होलका नू ता अग ने कुछ कहना नहीं, उनू ता वर मिलिया, ते दूसरे पासे प्रहलाद ने सड़ के सवाह हो जाने, ते तन गुरु ग्रंथ साहिब बचन करदे ने देखो मेरे परमेश्वर दी खेड, जिन्ने देवते दा वर लिया सी कि मैनू कदी अग साड़े ना, ते जदो अग दियां लाटां निकलियां होलका ता सड़ के राख हो गई, ते जेड़ा अंदर प्रहलाद बैठा सी ओनू वाहिगुरु ने तत्ती वाह ना लगन दित्ती, ओनू सेक नहीं लग्या। ते कहिंदे ने उस दिन तो बाद जदों होलका सड़ गई ते हिंदुस्तान दी धरती ते हर साल अग मचा के होली वाले दिन होलका दी राख उड़ाई जांदी सी सड़ के, एदा मतलब सी कि अज दे दिन एक सच दे पुजारी दी जित होई, सच नू पूजन वाले नू अग भी ना सार सकी ते दुनिया दे बंदे नू खुश करन वाले नू भावे ओदे कोल देवते दा वर सी ओनू अग ने साड़ के सवा कर दिता। गुरु ग्रंथ साहिब च शब्द हुंदा महाराज कहिंदे संडा मरका जाए पुकारे, एदा अर्थ भगत नामदेव जी दा शब्द है। संडा ते मरका दोनां ने जाके हरनाक्ष कोल पुकार कीती, पढ़ा नहीं तेरा पुत्र पढ़दा नहीं, हम ही पच हारे असी थक गए हां, क्योंकि राम कहे कर ताल बजावे, ताड़िया मार के राम नाम जपदा, राम कहे कर ताल बजावे चटिया सबे बिगाड़े, इन्हें ता नाल दे साथी भी बिगाड़ दिते ने। किन्ने जदों इन्नी गल कही फिर मां आई, कह लगे मां ने कहा बस दा बस कीनी सब राजे, पुत्र सारी धरती तेरे बापू दे अधीन है, बिनती करे पटरानी मेरे बच्चिया तू गल मन लै, छड़ दे तू राम नाम नू, कगे लिख दे ने सहित पुत्र प्रहलाद कहा नी माने तिन तो औरा छानी। सच दे पुजारी ने मां नू भी जवाब दे दिता, मां दे बचन मन्ने नहीं, पुत्र प्रहलाद कहा नहीं माने तिन तो औरा छानी। अगे कहिंदे दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया, हुण दुष्ट इकट्ठे होए इन्हां ने सलाह कीती करसे औद कनेरी, प्रहलाद नू आपां खत्म करने ते साध संगत अगली पंक्ति वल ध्यान देना जेड़ी मैं अर्ज करनी चाहना। दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया करसे औद कनेरी, साहब कहिंदे गिर तर जल ज्वाला भय राख्यो, चार शब्द कह गिर गिर दा अर्थ पहाड़, तर दा अर्थ रुख, जल दा अर्थ दरिया सी पानी करने आ, गिर तर जल अगे वे ज्वाला, ज्वाला दा अर्थ अग, गिर तर जल ज्वाला भय राख्यो, राजा राम माया फेरी, मेरे वाहिगुरु ने एहो जिहा कौतुक वरता दिता ना पहाड़ ना रुख ते ना पानी दियां लहरां ते ना ही उनू बलदी होई अग साड़ के सवा कर सके। उस तो बाद ए खेड चल पई, ए होली इथो तक आ पहुंची। वख वख इलाकिया विच ढंग मनाण दे वख वख ने, किते लठ चला के होली मनाई जांदी है, किते बजुर्गां उत्ते चिक्कड़ सट के

तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देशा ना हों जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म भया परणवत नानक तिनकी शरणा।

दलील देनी है जेडी गुरु की पदवी है ना। देखो गुरु की पदवी नू चैलेंज करना साडे अंदर की अग्ञानता होगी। जे कोई कहे भी गुरु ग्रंथ साहिब विच तुसी भगतां नू गुरु की तुलता नहीं दिती, मैं कहना तुसी सारे बाणी पढ़न वाले बैठे हो, कोई गुरु ग्रंथ साहिब विचों यह तुक लिखा दे कि गुरु अर्जुन देव ने किसे गुरु साहिब की बाणी दर्ज करदियां पहला यह सरलेख दिता हो बाणी गुरु नानक देव जी की, किते दिखा दियो। पहला शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दा हुंदा राग श्री राग महला पहला, महला पहला है ए ने क्या गुरु नानक साहिब जी की बाणी। महला दूजा उन्होंने पहला श्लोक हुंदा है कि जिस प्यारे सोने इस आगे मर चलिए, ए नहीं लिखिया कि गुरु अंगद देव जी की बाणी, गुरु अमरदास जी की बाणी, गुरु रामदास जी की बाणी। शब्द वरते ने महला पहला दूजा तीजा चौथा पंजवा ते नौवा, पर कोई भगत ऐसा नहीं जिनी बाणी आरंभ कर दे शब्द जी ना वरत्या हो बाणी आरंभ हुंदी है ते कहिंदे बाणी भगत कबीर जीओ की, बाणी भगत रविदास जी की, बाणी भगत नामदेव जी की। ओ दुनिया दे लोगो समर्थ गुरु अपने लिए शब्द महला केवल शरीर वरतदा है ते जिन्ना नू लोग ठोकर मारदे ने उन्हां नू भगत जी कह के पुकारदा पिया। की तां गुरु ग्रंथ साहिब की विशेषता नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच आउणा अमर संचार पे वे इस हिंदुस्तान की धरती ते सतगुरु गुरु कलगीधर जी ने, मैं कहना कैसे कमाल की गल, 39 साल की उम्र सी ईसा दी, जिस दिन ज्ञान होया कि मैं रब का पुत्र हाँ मैं कटाक्ष वाल नहीं जाना। 35 साल की उम्र सी जितने महात्मा बुद्ध नू ज्ञान होया, हैरानगी की गल कि असी केसा की कदर ना जानिए। अज विशा भी अगे ये चलना है कि महात्मा बुद्ध जिदन घरों निकलिया सी ते पहला काम उन्हें रथवान नू कहा कि मेरे केस कट दे, उहदे केस तलवार नाल कटे गए। ते जिदन ज्ञान होया 35 साल की उम्र विच पहला शब्द कहा कि मेरे केस बन दियो, क्योंकि ज्ञान वाले दे सिर दे उत्ते केस ही हुंदे। कभी तक्यो महात्मा बुद्ध की जीवनी कभी पढ़ियो, मैं हैरान होया बुद्ध इतिहास नू पढ़ के कि जिस दिन ज्ञान होया उन्हें कहा मेरे सिर दे उत्ते चूड़ा कर दियो, क्योंकि ज्ञानी दे सिर दे उत्ते केस ही सुंदे हुंदे। ज्ञान किते भी मिल जाए 35 साल की उम्र विच महात्मा बुद्ध जी नू ज्ञान होया, 39 साल की उम्र विच ईसा जी अपने आप नू रब दा पुत्र कहिंदे ने। ओ दुनिया दी लोगो कि 33 साल की उम्र विच खालसा साज के सतगुरु ने सारियां रहमतां खालसे नू दे दित्तियां सन। 33 साल की उम्र इन्नियां रहमतां कीतियां साहिब गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ते आधारित कि जिन्हां नू अमृत छकाया गया। तुसी उन्हां बारे शब्द पढ़दे आ रहे हो कि अखौती जातां, अखौती शब्द में वरते ने रब ने कोई जात नहीं बनाई, उन्हें केवल एक मानस जात बनाई सी। मानस की जात एक है पहचानबो वाला शब्द सी पढ़ने, मानस की जात सब है एक है पहचानबो। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अमृत बचना दे अनुसार के देखो जात पात ते आधारित जे असी कहने गुरु कलगीधर जी ने नीविया उच्चा चुकिया, मैं कहना गुरु ग्रंथ साहिब जी शब्द की रोशनी तो दूर ना जायो, अमृत की व्याख्या बाणी से आधारित करो, क्योंकि एक चाल है कि बाणी नू वक दसो ते अमृत नू वक दसो, कि द्वार खड़ा करो कि अमृत वखरा है कि गुरु गोबिंद सिंह ने नीविया चुकिया। गुरु ग्रंथ साहिब किते बाबे कालू का नाम नहीं आया, तुसी बाणी पढ़ने वाले हो, किते मां तृप्ता दे नाम नहीं आया। दो गुरु साहब ने कि जिन्हां दे बापू का नाम आया, एक ते गुरु अंगद साहब के पिता का नाम आया, फेर विछाया फेरू आन, फेर आनी फेरू दे रारे नू अंकड़ लगी है, जे फेर आन पाठ करांगे दर तोएगा फिर दोबारा अंकड़ लगी है। फेरू आन बाबे फेरू दे पुत्र ने, जा बाबा तेज भान जी का शब्द एक ना है, किते बाबे कालू जी का नाम नहीं, मां तृप्ता का नाम नहीं, बेबे नानकी का नाम नहीं। अजकल दिया कूड़े चुकते ने अपनिया किताबा, असि मैं कभी ग्रंथ शब्द उन्होंने नहीं वरतदा, ग्रंथ केवल गुरु ग्रंथ साहिब सिख दे अंदर भावना होवे वह चुकते ने अपनिया महबूबा के नाम विच, अपने जिन्हां नू प्यार करते ने उन्हां शब्द मन पक्के का ग्रंथ बना के गुरु ग्रंथ साहिब की बराबरी करते ने। वह गुरु के सिखो क्यों चुको जुग अटल है, एदे विच फानी संसार वाले बापू का नाम नहीं, मां का नाम नहीं, पुत्रां दा नाम नहीं, इथे भैन दा नाम नहीं, पर एक गुरु नानक ते भरोसा करो कि जिन्हों लोग नीवा शूद्र कहिंदे सन, भाई लालो दा नाम गुरु ग्रंथ साहिब

दृष्ट धरत तम हरण दहन अग पाप प्रणासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोह वस करण शरण जाचक प्रतपालन आत्म रस संग रहन कहन अमृत कल ढालन

गुर जगत फिरन से अंगरो राज जोग लहना करे अमें दिष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख तोवे सुकहु तल गुर सेविए एहन सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए।

देश दे जिसनों कहिंदे ने कि अहिंसा दे नाल आजादी प्राप्त कीती असी। मैनूं पिछले थोड़े दिन होए एक सर्वधर्म सम्मेलन विच बोलण दा मौका मिलिया ते उत्थे इस देश दे ढोंगी ते फोके राजनीतिक भी पहुंचे हुए सन तो बार बार बोलते गए ये बापू का देश है और हमने इतनी बड़ी आजादी अहिंसा से प्राप्त की है ते बार बार अहिंसा का जिक्र करना। फिर गल रही नहीं गई मैथों मैं दो शब्द कहने पे मैं कह अहिंसा नाल जे आजादी प्राप्त की ते इन अहिंसा नाल चलाओ 200 साल दे अंग्रेजी राज ने इतनी गोली नहीं चलाई जितनी 35 साल दे इस राज दे बापू गांधीवादियां ने अहिंसावादियां ने गोली चलाई। डुब के मर जाना चाहिए इन्हों शर्म गजब की गल है कि वह विदेशी ने जाबर सन चलो इस देश नूं लुटन आए सन देश दे ते जाबराना उन्हां दा कब्जा सी लेकिन 200 साल दे राज विच इतनी गोली नहीं चलाई इतिहास गवाह है और 200 साल दे राज विच इतने बंदे नहीं कतल कीते 35 साल विच इन्हां चरखे कत्तण वालियां ने वर्त रखण वालियां ने अहिंसावादियां ने ऐ कुछ कीता ऐ कारनामे कीते 35 साल विच आंकड़े जो है सामने ने आसाम विच बंगाल विच कश्मीर विच पंजाब विच तमिलनाडु विच गुजरात विच महाराष्ट्र विच ऐसा केड़ा सूबा है जिथे इन्हां अहिंसावादियां ने कतलेआम नहीं कीता और पौंडी राजनीति ने खिमा करनी खून नहीं बहाया। करीबन करीबन हर प्रांत विच इन्होंने जुलम ते तशद्दुद दी अपने ढंग नाल जो है छाप इन्होंने लाई है। जो थोड़ा अरसा इत्थे पहले अमृतसर विच महान घिनौना कारनामा इन्हां अहिंसावादियां तो होया बार बार मैं तो अहिंसावादी कहदियां भी शर्म आती है भई ये अहिंसावादी ने बेसी हिंसा करनी नहीं बापू ने अहिंसा से ये आजादी प्राप्त की है अवल तो असी इस भी नहीं मनते ये अहिंसा नाल आजादी नहीं प्राप्त हुई इतने भगत सिंह जैसे अपना खून ना डोलते इतने बेशुमार सिंह फांसियां ते ना चढ़ते खिमा करनी ये देश से अज भी गुलाम होना सी आजाद थोड़ी होना सी निरी फोकी अहिंसा नाल जुड़ी जब पाकिस्तान या चाइना चढ़ के आया सी फिर अहिंसा नाल बचांदे इस नूं वर्त रख के बचांदे या चरखे कतण वाले नूं अगे कर दे कोई चरखे कतण नाल देश बचे कोई वर्त रखण नाल देश बचे नहीं इत्थे बंगालियां ने अपना दिमाग लड़ाया पंजाबियां ने अपना खून बहाया ते देश आजाद होया। पर गजब की गल यह है कि दिमाग लड़ाण वाले रुल गए खून बगाण वाले रुल गए ते चरखे कतण वाले सिंघासणा ते जा बैठे। बदकिस्मती है जी है फोके चरखे कत्तण वाले फोके वर्त रखण वाले ते फोकियां अहिंसा दियां गल्लां करण वाले। दो चार गल्लां होर भी मैं थोड़े नाल इस वक्त करनियां ने दार्शनिक ऐसा कहने ने दूर दृष्ट बंदे ते सानू इस वक्त बड़ी दूर दृष्टि तो काम लेना पैना क्योंकि एक पासे खाई होवे एक पासे खड होवे ते बड़ी सावधानी नाल चलना पैना नहीं तो ऐसा होगा कौम खड़े चली जाएगी खाई चली जाएगी ते मंजिले मकसूद ते नहीं पहुंच सकांगे। बहुत वड्डी सावधानी चाहिए इस वक्त इतनी मैं अर्ज करता बहुत गहरी खाई एक पासे और बहुत गहरे खड ने इन्हां दा मैं जिक्र फिर दोबारा करांगा लेकिन खतरे च आप ऐसे रस्ते विच जो संकीर्ण है ते खड ते खाई दोवें पासे ने तो संभल के चलना है बस इतनी गल है। अभी नक कटण की कोशिश की थी या इंज कह लो किसी की पत्नी चुकने आना अगले की नक ही कटनी है इंज बदला लिया तो क्षमा करनी ये रावण निर्दोष है कि किसी आम बंदे की भैन नूं भी कोई इस तरीके दे नाल व्यवहार करदा उन्हें भी आपे तो बाहर होना सी ते राजा सी

शरीर नु तो लेने नाल मन ते नहीं धोता जांदा, विचार ते शुद्ध नहीं हुंदे। तन नु रोज धोंदा रहो, सुभा नहीं बदलना। ऐसा भाई गुरदास जी ने एक गल आखी, कहन लगे तुमने अमृत सिंचिए, तुम्मे दी वेल में कोई रोज मनुख अमृत सिंचदा रहे, मिठा घोल घोल पानी विच उस दे वेल दी जड़ विच पाउंदा रहे, ते की तवक्को रखदा है भी तुम्मे दी कुड़त्तन मिठास विच बदल जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच हजूर ने ख्याल दिता है, कहिंदे ने

0: रोज़
1: अमृत सिंचन नाल भी निमदा सहज नहीं जांदा, भाव सुभा नहीं बदलदा। सहज दा अखरी अर्थ सुभा, क्योंकि जेड़ी गल सुभाव च शामिल हो जाए, जेड़ी गल सुभाव च शामिल होवे ओ मनुख सहजे कर लेंदा, ते जेड़ी गल सुभाव च शामिल ना होवे जे ओ करन दी कोशिश भी करे तां ओ करन लगे उसनू उचेच करनी पैंदी। इसलिए सहज लफज सुभा नाल शामिल हुंदे, सहज सुभाए होए सो होए। सहज हमेशा उस गल विच हुंदी है, उस काम विच हुंदी है जेड़ी सुभाव च शामिल हो जाए। तो हजूर दा कहन दा भाव है, कहने निम नू कोई अमृत सिंच लाए पर उनका सहज नहीं जांदा, भाव उनका सुभाव नहीं बदलता, क्योंकि निम नू अमृत तो बाहर पाया गया है ते सुभाव उनके अंदर है। इसी तरह हजूर कहते ने कई गल्लां मनुख दे तन नाल सांझ रख दियां ने, बाहर नाल सांझ रख दियां ने। तन का कपड़ा मैला हो जाए, तन मैला हो जाए, तन उपर दी चीज है, इनू मैल बाहरों लगनी, बाहरों पै खाक मिट्टी ते तन ते मैल चढ़ जाए, ते उस मैल नू बाहरों पई मैल नू उतारन लई बाहर पानी दी लोड़ है। तन दा कपड़ा मैला हो जाए, साबण दी जरूरत है। हजूर कहंदे

पाओ निरंकार भव खंडन साव सुख नाम निध देसी हर जियो तेरी दाती राजा मानस बपड़ा क्या सारा ही क्या तिसका मोहताजा रहा जिन हर ख्याया सब किछ तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा थान दिया सुखदाता निखुट ना कभी जाई आनंद भया सुख सहज समान सतगुर मेल मिलाई मानु नाम जाप नाम आराध आन दिन नाम वखाणी उपदेश सुन साध संतन का सब चुकी कान जमाणी जिनको कृपाल हुआ प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी

प्रथम सिनेमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करनी वाहिगुरु जी का खालसा एकाग्रता प्रदान करने अज का सोरठ राग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का जो महान वाक आया है इस विच ऐसे विषय नू सतगुरां ने छोया है जो करीबन करीबन व्यापक है ते जगत दी समस्या है। मनुख दा कुछ लोड़ां दा जगत है, मनुख दा कुछ लोभ दा जगत है। ये जीवन दे ढंग दोई ने, लोड़ां दे च जीवना, लोभ दे च जीवना, तीजा जीवन नहीं है। कोई जी रहा है लोड़ां दी पूर्ति करने है, कोई जी रहा है लोभ दी पूर्ति करने है। अक्सर 99% मनुखां दियां लोड़ां पूरियां हो जांदियां, लोभ किसे दा भी पूरा नहीं होता। लोभ दा सुभाव है ते पूरा होंदा ही नहीं, होंदा ही नहीं। लोभी मनुख मरदे दम तक अधूरा ही रहिंदा है, अधूरा ही रहिंदा है। जगत दे च पूरन शांतमई जीवन उही जीवदे ने जो लोड़ां दे च जीवे,

एकत्र करी है माया, दान पुण्य नहीं संतन सेवा, कित ही काज ना आया, कार्य भरण सवारी सिज्जा

इना बचना ने धूप आई है, इना बचना ने खिचे है। तो उस प्रेमी ने दसिया ए बचन कलयुग दे अवतारी पुरुष धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ने। आप कई दफा देवी दे दर्शन कराए सन और संगी साथियां नु भी कराए सन, पर आज जिस ढंग दी एक धार्मिक खिच, एक रूहानी कसक, एक बाणी दा जो प्रभाव पिया, स्वयं खुद हैरान सन। ता आपने उना तो पुछया ए जोत किथे जल रही है। ता उस प्रेमी ने कहा ए जोत करतारपुर दे च जल रही है, उत्थे जगमगा रही है। ता आपने रुख करतारपुर दा कर लिया। पहली दफा जा रहे सन, पुराना जमाना, पगडंडियां दा रस्ता, घोड़े ते असवार सन। थां थां ते रस्ते ते राहियां कोल पुछ लैंदे ने करतारपुर केड़े पासे है और गुरु नानक दा टिकाणा किथे है। वाकई गुरु नानक दा टिकाणा ते करतार दे विच ही है। इस वास्ते गुरु नानक जिथे बैठन वो करतारपुर ही है, वो प्रभु दा टिकाणा है, वो ईश्वर दा टिकाणा है। जीड़ा राही मिलदा है रस्ते देच, ये खिच के तड़प नाल पुछ लेंदे ने करतारपुर किथे है और नानक तपे दा टिकाणा किथे है। राही दस देने वो अग्गे, ओ अग्गे, ओ अग्गे। गालबन इस तरह चार पंच दफा आपने राहियां तो पुछे करतारपुर किथे है ते गुरु नानक तपे दा घर किथे है। हर राही ने कह दिता ओ अग्गे, ओ अग्गे, ओ अग्गे। वाकई ईश्वर दा घर, गुरु दा घर, परम पुरख दा घर अग्गे ही होंदा है। सुरत नू अग्गे करिए प्रभु नाल जुड़दी है, परमात्मा नाल जुड़दी है। सुरत नू पिछे करिए पदार्थां वल चली जांदी है, संसार वल चली जांदी है। इसे तरह ही लगन नाल पुछदे पुछदे हुण ऐसे टिकाणे ते पहुंचे कि मंजिल तो मंजिल दा पता पुछ रहे ने, घर तो ही घर दा पता पुछ रहे ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी मुस्कुरांदी जोत रस्ते च मिली। संजोग भला और स्वभावक संजोग। आप गुरु नानक तो पुछदे ने भी धन गुरु नानक तपा कलयुग दे अवतारी पुरुष उनां दा घर किथे है। तो जगत गुरु गुरु नानक देव जी महाराज कहण लगे तू नानक तपे दे घर जाना है? हां मैं नानक तपे दे घर जाना है। आ मैं ले चला। कहिंदे ने लगाम गुरु नानक ने पकड़ ली, घोड़ी ते बैठे ने लहणा जी, गुरु नानक ही अपने घर तक ले जा रहे ने लगाम पकड़ के। साखी है, प्रेरणा देंदी है, जिस दी लगाम गुरु नानक आप ना पकड़े मुश्किल है उसका गुरु नानक दे घर तक जाना। ते लगाम गुरु नानक उसे दी पकड़ेगा जो लहणे दी तरह तड़पे हिरदे नाल पुछे नानक तपे दा घर किथे है, नानक तपा किथे रहिंदा। जद पहुंचे टिकाणे ते तखत ते बैठी हुई जो जोत दिखाई दिती इते ओही सी जिसने लगामा पकड़िया सन, इते ओही सी जो लेके आया इथे। कहिंदन भुब्बा निकल गईया, नेत्र अश्कबार होए, कदमां ते मस्तक रखिया निर्माणता दा और शीतल स्वभाव दा, शांतमई किरणा दा इतना असर होया लहणा जी अपने आप नूं काबू च नहीं रख सके।